0: जीवियों को लड़ा की जरूर लूंगा बाजा मुझे केरे मजे मारा कर दे पापा
1: चाहे कोई कुछ हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे
2: दांत लीक करूं तो मुझको जेल भेज दो सूंघने में क्या है

0: अरे तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ। किक किक किक किक। टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।